0: आओ बच्चों, हम सब जालिमों से इजहार बेजारी करें, सैयदा जैनब ने जो की वो अजादारी करें, बावफा हैं शेह के मकसद से वफादारी करें, यूं इमाम वक्त के आने की तैयारी करें, तैयारी करें, तैयारी
1: करें। आ रही है आज भी मैदान से हल मिल सदा।

ना हमारा आपका, ये जो हदीस पढ़ रहा हूं अभी, ये पूरे अशरे का खुलासा है। कहने का मतलब ये कि आज के बाद अगर आपको मजलिस में नहीं आना है तो मत आइए, कोई हर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुलासा अगर आपको मिल जाए ना, तो मेरा मानना ये है कि ये हमारे लिए काफी है। किसके लिए? फौज, कामयाबी के लिए। लेकिन इस बात को क्या हम गले से उतार सकेंगे? हमारी गुजराती में कहे आ बात तुमने हजम था से, क्या आपको ये बातें हजम होगी? पांचवें इमाम की हदीस है, वसाइलु शिया की किताब में है, ऊपर जाके पांचवें इमाम इस बात को कसम खा के शुरू करते हैं। सुनिए, गौर से सुनिएगा। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वल्लाह, पांचवें इमाम कहते हैं, वल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, वल्लाह, मा मअना मिन अल्लाह बराअ, याद रखना अल्लाह सुबहानहु व तआला के साथ हमारे लिए कोई बरात नहीं। उसमें पांचवें इमाम खुद शामिल है, वल्लाह मा मअना मिन अल्लाह बराअ वला बैनना व बैन अल्लाह कराबा। ये भी याद रखिएगा कि हमारे अहले बैत की बात हो रही है, खुद की बात मौला कर रहे हैं, वला बैनना व बैन अल्लाह कराबा। इसी बात का भी ख्याल रखिएगा, हमारे दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई किस्म की रिश्तेदारी नहीं। वला बैनना व बैन अल्लाह कराबा, हमारे और अल्लाह के बीच कोई कराबतदारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। वला अलल्लाहे मिन्ना हुज्जा, ये भी याद रखिएगा, अल्लाह के सामने हमारे पास कोई दलील, कोई हुज्जत नहीं होगी, क्योंकि वो अल्लाह है, हम उनके बंदे हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वमा लना अलल्लाहे हुज्जा, अल्लाह के ऊपर हमारे पास कोई भी हुज्जत नहीं होगी। वला नतकर्रबो इलल्लाह इल्ला बित्ताअ, याद रखिएगा, हम, हमारी बात नहीं हो रही, खुद को शामिल कर रहे हैं पांचवें इमाम, वला नतकर्रबो इलल्लाह इल्ला बित्ताअ, हम अल्लाह की नज़दीकी अगर हासिल करना चाहते हैं तो इताअत परवरदिगार के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हमारे पास यानी कौन? यानी कौन? खुद पांचवें इमाम कह रहे हैं, वला नतकर्रबु इलल्लाह इल्ला बित्ताअ। उसके बाद मौला ने कहा, याद रखिएगा, कसम खाकर मौला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि खुदा के साथ हमारी कोई बरात नहीं, खुदा के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, खुदा के ऊपर हमारी कोई हुज्जत नहीं चलेगी। हम भी अगर खुदा की नज़दीकी हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह की इताअत करके करते हैं। फमन काना लिल्लाहे मुतीअन तनफ़ुहु विलायतुना, जो आदमी अल्लाह का फरमा बरदार होगा उसको हमारी विलायत काम आएगी। वमन का ना लिल्लाहे आसियन लम तनफ़ुहु विलायतुना, और जो खुदा का नाफरमान बंदा होगा, मासियत करने वाला बंदा होगा, उसको हमारी विलायत नफा नहीं देगी। वही हकुम ला तगतरू, वही हकुम ला तगतरू, दो बार मौला ने कहा, वही हकुम, खबरदार खबरदार धोखे में मत रहिएगा, खबरदार धोखे में मत रहिएगा, धोखे में मत रहिएगा। पांचवें इमाम का फरमान है, हम भी खुदा से नजदीकी चाहते हैं तो इताअत के हवाले से। और याद रखना, हमारे यहाँ क्या होता है, जन्नत बत रही है, जैसे हमारे बाप की जागीर हो जन्नत, और जिसको भी चाहो जहन्नम में डाल दो, जिसको भी चाहो, कोई या खुदा ने किसी को रिजवान बना लिया है और किसी को, बोलिए बोलिए, मालिक, जन्नत का
دربان ہے.

जो आखिर रह गया था वो ही आदमी बयान करता है कि मैं लश्करे हूर से थोड़ा दूर रह गया था, वजह यही थी कि मैं बहुत प्यासा था, बहुत कमजोर हो गया था, मैंने क्या देखा एक ज़ईफ शख्स मेरे सामने आया, हाथ में पानी का मशकीजा था, मेरे बाजू में बैठे और कहा ऐ खुदा के बंदे फिक्र न कर, मैं पानी लेना चाहता था लेकिन मेरे हाथ शिद्दत प्यास की वजह इतने लरज रहे थे कि सामने वाले ने कहा खुदा के बंदे फिकर न कर मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। वो अपने चुल्लू में पानी भर भर के मुझे पिला रहा था। आपको पता ये कौन है? ये खुद हुसैन मज़लूम है जो जानवरों को भी पानी देता है। हाय उसी हुसैन का छोटा असगर, जालिमों ने पानी नहीं दिया, बस अल हासिल और हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए, आकर कहा फर्जंद रसूल हल्ली तौबा, फर्जंद रसूल क्या मेरे लिए तौबा होगी? हुसैन ने मरहूम कहा करते थे, हुसैन मज़लूम ने होर को खड़ा किया, अपने सीने से लगाया, जब दोनों सीने एक दूसरे से लग गए होर ने कुछ महसूस किया, हुसैन की आंखों से आंसू जारी है, होर ने कहा मौला रोना तो मुझे चाहिए, अरे गुनहगार तो मैं हूँ, आप क्यों रो रहे हो? हुसैन ने कहा हुर माफ करना, जब दुश्मन बन के आया था मैंने पानी दिया था, ऐ हुर आज हुसैन इतना मजबूर हो गया है कि तेरी मेहमान नवाजी नहीं कर पाया। बस हुर ने कहा मौला इसकी वजह भी मैं हूं, इसलिए मैदान में जाने की इजाजत दो। हुसैन ने कहा सबको जंग के लिए जाना है, सबको इजाजत मिलेगी, लेकिन ने कहा मौला जाने से पहले मैं एक कुर्बानी देना चाहता हूँ, साथ में जवान फर्जंद को लाया हूँ, अगर आप इजाज़त दो मेरा फर्जंद पहले जाएगा, आज़ादार हो। वो फर्जंद मैदान में गया, बहादुरी से लड़ाई की, एक मकाम आया वहाँ से निदाई या बताओ अदरिकनी, बाबा मेरी खबर लीजिए। बस हुसैन और हुर मैदान की तरफ निकले, हुर ने पूछा मौला कहाँ जा रहे हो? जब वहाँ पे पहुँचे तो हुर ने क्या देखा, हुसैन हुर से पहले पहुँच गए, हुर बाजू में आए, हुर ने अपने आस्तीनों को बुलंद करना शुरू किया, हुसैन ने हुर की तरफ नज़र की, कहा हुर क्या इरादा है? कहा मौला जवान बेटे का लाशा है ना, उठाना तो पड़ेगा, आज़ादार हो। हुसैन का कयामत का जुमला, मरहूम कहा करते थे, हुसैन ने हुर को कहा ऐ हुर क्या जवान बेटे का लाशा कभी कोई बूढ़ा बाप उठाता है? मैं कहूंगा मौला असले आशूर से पहले एक घड़ी वो आएगी, आपका करियल जवान शहीद होगा और आपको उस लाशे को उठाना पड़ेगा। अज़ादारो हुसैन की कैफियत क्या है पता है ना आपको, अरबाब मिंबर से सुना है, हुसैन का ये जुमला निकला था ऐ बनी हाशिम के बच्चों हुसैन की मदद करो, जवाब बेटे कर अला लअनतुल्लाहि अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमु वयमुनक़लिबी यनक़लिबून إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين

0: बहुत शुक्रिया। क्या वक्त हो रहा है, जब्त कर पाई तुम?
1: नाचारी की क्या दवा, रोजे की मन्नत मांगी है नायला के लिए।
0: नायला, अल्लाह की पनाह नायला से। नायला से अमान हो। अगर तुमने घोड़े की सवारी की मश्क की होगी तो तुम जानती होगी कि जब घोड़ा अपने सवार को जमीन पर गिरा दे तो सवार के दिल से खौफ दूर करने का बस एक ही तरीका है कि वक्त जाया किए बगैर दोबारा उसे घोड़े पर सवार कर दिया जाए। नायला का हल सिर्फ शादी है, ताकि घर के कोने में बैठ जाए।
1: तो उस खत में मेरी बेटी की शादी की बात की गई थी जो आपकी नींद उड़ गई, बताइए मुझे।
0: खत? कैसा खत?
1: कैसा खत? वही खत जो कल से आपके हाथ में है।
0: वो शाम से खत तो था, लेकिन उसमें नायला की शादी की कोई बात नहीं थी।
1: तो फिर क्यों इतना परेशान है?
0: तुम्हें नहीं पता, ये सब सियासी चालाकियां हैं। अगर हमने खत के जरिए अपनी अपनी भाईचारगी यजीद से साबित कर दी तो ठीक, नहीं तो समझ लो कि ये तिजारत खाना बगैर तिजारत के है।
1: लानत हो उस पर कि आजकल उसका खत हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। काश ऐसा काम करो कि इनका मुंह बंद हो जाए।
0: क्या करूं? नहीं पता कौन सही है और कौन गलत, ये सब मेरी समझ से दूर है। तुम्हारी जान की कसम नहीं समझ पा रहा हूँ।
1: एक पूरे कबीले की निगाहें आपकी तरफ हैं। सियासत के हारों की आखिरी पनाहगाह आप हैं। बड़े लोग बड़ी मुसीबतों से नहीं घबराते। आप जो भी करेंगे यकीनन उसमें भलाई होगी।
0: नहीं पता, शायद सही कह रही हो, शायद ऐसा ही हो।
2: खुदा की कसम, अफसोस है कि तमाम कुफा वालों का नाम हो लेकिन तुम्हारा नाम। हर एक नाम एक उम्मीद की रोशनी है इमाम के लिए।
3: सहराओं में कहीं भूखे ना रह जाओ। कितना खाना लिया है आपने? कहीं ये खाना कम ना पड़ जाए आपको। सुन रहे हैं आप?
4: वासिद के प्यारे, खत को इमाम के घर तक थोड़ी लेके जाऊंगा। नामा भर तक पहुंचने में एक दो हफ्ते से ज्यादा वक्त थोड़ी लगेगा। जितनी खुराक रखी है वो मेरे लिए काफी है।
3: बहुत हुआ बेटी, ये बच्चा नहीं है जो अपने बुरे भले को ना जानता हो। उसका काम करने दो, काफी है।
5: रास्ता जानने वाला कोई दूसरा नहीं मिला जो खत इनके हवाले कर दिया?
2: या अल्लाह, बेटा तुम्हें किसने मजबूर किया ताकि ये काम करो?

0: नहीं, मजबूर क्यों, मेरी ही ख्वाहिश थी।
1: खुदा तुम्हारी मदद करे, इसका बोझ भी कम नहीं है याद रखना, लेकिन इसके होते हुए गमों गुस्से के बोझ की जरूरत नहीं है।
2: आराम से जाना, मुझ पर इससे ज्यादा सख्ती मत करना।
3: तुम्हारी इस तलखी को तुम्हारे इस हाल पे छोड़ दूंगी, लेकिन अब बहुत हुआ, बहुत हुआ, बस करो। कल आले रसूल अल्लाह को क्या जवाब दूंगी,

0: इधर देखो आया, मैं आया हूँ। बाखुदा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों इतना परेशान हो।
1: लंबे सफर की बात नहीं, अगर उस खत को तुम्हारे सामान में पा गए तो तुम्हारा काम तमाम है। खतरा बयाबानों और वादियों में नहीं है, यही पर है, मेरे कानों के नजदीक कूफे के दरवाजे पर है।
0: आहिया, तुम्हें अपना ईमान नहीं खोना चाहिए। तुम खुद जानती हो कि अगर जिंदा ही रह जाना होगा तो शायद मौत के मुंह से भी वापस आ सकता हूँ, और अगर मरना ही होगा तो नरम बिस्तर और कूफे के दरवाजे के बीच मर जाने में कोई फर्क नहीं है।
1: मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया, मेरी ऐसी हालत नहीं है कि तन्हा रह सकूं। आज ये कलिया बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो तुम्हारे बिना क्या करूंगी।
0: अपने सब्र का सवाब कम मत करो, उसके दुनिया में आने से पहले वापस आ जाऊंगा, और अगर तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो अभी बता दो। वो राजी नहीं है कि मैं जबरन जाऊं।
1: अच्छी तरह सुनो, जब भी कभी तुम पर कोई सख्त और खतरनाक वक्त आ जाए, जान लो उसे अंजाम देने से पहले मुझे और होने वाले बच्चे के बारे में जरूर सोच लेना, फिर काम अंजाम देना। समझ गए?
2: खुदा की पनाह में। बासित, अपना ख्याल रखना, सिर्फ तुम्हें खतरा नहीं है बल्कि हर वो शख्स जिसका नाम उस खत में है, वो सब, उनका कबीला और खानदान खतरे में है। अगर इनका निशान भी उनको पता चल जाए तो मुसीबत है।
3: नक्शा वही है जिसे हम देख चुके हैं, तन्हा खतरनाक जगह दरवाजा है। लोग ख्याल रख रहे हैं कि तुम सलामती से वहाँ से गुजर जाओ, परेशान मत हो।
2: अपने चेहरे पर कोई खौफ जाहिर ना होने दो, कवि और मोहकम रहो हमेशा की।
3: मेरी दोनों आंखें तुम्हारी तरफ है, परेशान मत हो।
0: भाई की जान,
1: कुरान मजीद का साया तुम्हारे सर पर हो और तुम्हारी सलामती और आकेबत बखैरी का जामिन हो। तुम्हें खुदा के हवाले करती हूँ, खुदा की जमानत में हो।

0: सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अगर आपके लिए मुश्किल नहीं है तो कुछ कदम चले और कुछ बातें करते हैं।
1: सब ठीक तो है?
0: जी ठीक है
1: इंशाल्लाह। थोड़ा इंतजार करवाता हूँ।

0: नईम जरूरत से ज्यादा तल्ख मिजाज है। तुम भी एक दिन की दुल्हन तो नहीं हो, उसकी आदतों को अच्छी तरह जानती हो। आज मारेगा और चिल्लाएगा और दूसरे दिन सुबह उठेगा, तुम्हारे पांव पड़ेगा और मोहब्बत दिखाएगा।
1: उसका गुस्सा हद से ज्यादा हो गया है बाबा। मेरे बच्चों की आंखों के सामने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहता है वो, और तमाचा मारता है। तलमा के अंदर जो भी ताकत थी वो नहीं बची।
0: इन दिनों मैंने उस पे बहुत सख्तियां की हैं। थोड़ा वक्त नए दिलो दिमाग के साथ परवान चढ़ने दो।
1: एक दरख्वास्त और इल्तिजा लेकर आई कि जरात खाने को नईम से ले ले और उसे इस काम से छुटकारा दे, कि उसे एक अच्छा हरीफ बनने का हुनर आ जाए और माल को इंसाफ के साथ लोगों में तकसीम कर सके।
0: वालेकुम अस्सलाम। बड़ी अजीब आरजू लेकर आई हो तलमा।
1: इस तिजारत खाने को किसी और के हाथ देना सख्त काम नहीं है। हिलाल के हवाले कर दे, औरतों के हवाले कर दे, नईम के अलावा किसी को भी दे दे।
0: नईम की जिल्लत तुम्हारी जिल्लत है। तुम मियां बीबी कब से इस तरह हो गए हो तलमा?
1: जब से मेरे सीने में जनाब औहद के हजार राज समा गए हैं, वही राज के अगर तलमा अपना मुंह खोल दे

0: वो कौन सा राज है जिससे मैं बेखबर हूँ?
1: कोई अहम चीज नहीं है। बाप ने बेटी को इख्तियार दे रखा है कि जो कभी भाई के बेटे को चाहने लगती है तो कभी माविया के बेटे को। वो गूंगा हो जाए जो मुंह खोले। बाबा जान, मैं इस खानदान की दुल्हन। ना ही अजियत देने का इरादा है, ना ही नाफरमानी का। हर खानदान में हजार बलाएं आती हैं और बुजुर्गों की होशियारी से दूर हो जाती है। आज आपकी होशियारी का वक्त है। मैंने तो खबरचीनी करने वालों का मुंह बंद कर दिया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि अगर नायला को पता चल जाए कि उसका बाप भी यजीद से उसका मामला तय कर चुका है, या नर्म दिल वाले बाप सोची अगर ये बात उसे पता चली तो क्या होगा? देख रहे हो बाबा, देख रहे हो कैसे आग भड़क सकती है।
0: अपनी आखिरी बात को पहले बोलो।
1: मेरे और नईम के बीच जो बुलंद मकाम के काबिल है वो मैं हूँ। जिसकी जुबान तेज और सियासत को समझती है वो मैं हूँ। और जिसका यजीद से कोई रिश्ता है वो मैं हूँ।
0: तो
1: तिजारत खाने को नईम से ले ले और तलवा के हवाले कर दे। मैं भी अपना मुंह बंद कर लूँ कि ऐसे की कुछ हुआ ही ना हो।
0: नहीं लाता। औरत को शहरत और तिजारत खाने से क्या लेना? रुको, तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूं। तिजारत खाने को कुत्ते के हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम वो ढोल हो जिसमें कोई आवाज नहीं।

चाहो फरियाद करो, जो मन करता है वो करो। जिस रास्ते पर जा रही हो वो जन्नत तक नहीं जाता, और इसका अंजाम बुरा है, बुरा है।

0: चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए वो।
1: तुम्हें पहचान लिया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा,
0: इन सब के नाम का पता लगा के रहूंगा। और मुझे ये शख्स भी चाहिए, वो खत इसमें है।

0: बहुत अच्छा काम किया।
1: जिंदा है सरदार।
0: अच्छा लगा तुम्हारा काम। इसका ख्याल रहे।
1: जी सरदार।

las karo. बहुत ही सख्त हफ्ता गुजरा, इतना सख्त जैसे सवा नेजे पर सूरज। गमो गुस्सा बहुत हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपनों की नाखुशी को देखूं। उठाओ और देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। नया वित्र और कपड़े और सेवर, ये तीनों औरत

को खुशहाल करते हैं। तुम्हारी खुशी घर को गर्म और रोशन करती है। हंसो बेटी, हंसो हंसो।

0: और बहनों,
1: बलाएं दूर हों, बहुत खूबसूरत है।
0: बैठो।
1: आपने जब हमें यहाँ आने का हुक्म दिया तो मैंने गुमान किया कि तिजारत खाने के कारोबार में कोई मुश्किल पेश आई है। मुझे सोग के बाद ऐसी शादी की उम्मीद नहीं थी।
0: आज के बाद इस घर में मुश्किल कम और खुशी ज्यादा होगी।
2: कारोबार में मुश्किल पेश आने की आपकी क्या मुराद है? कुछ हुआ है क्या जिसकी मुझे खबर नहीं है?
1: नहीं मालूम। मैंने गुमान किया कि नईम को तिजारत खाने से हटाना खुद एक बड़ा मसला था, या मेरे तिजारत खाने को संभालना आप सब लोगों के लिए इतना बड़ा मसला बन गया।
0: नईम मर्द है, इसकी पूरी उम्र उस काम की तरबियत में गुजरी है। इसके अजदाद, इसका पूरा हसब और नसब ताजिर था। तुम परेशान मत हो दुल्हन, जब तक मैं हूं तब तक नईम के दुश्मन के हाथ खुशी नहीं लगेगी।
1: नायला के कारवां का माजरा उसकी बरखिलाफ साबित हुआ है।
0: तुम्हारी माँ ने तुम्हारे डर और परेशानी के बारे में बताया। अगर हमेशा साथ रहने वाले करीजों से भी तुम्हें सुकून नहीं मिलता है तो क्या हिलाल को वापस बुला लूं? जबकि मैंने उसको बेवजह मासूल किया, लेकिन अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो मुश्किल नहीं है।

0: अच्छा हुआ तुम आ गई। शायद तुमसे ही बात करके मेरा दिल हल्का होगा।
1: कुछ हुआ है क्या?
0: तुम मेरे इस वजनी बदन पे मत जाओ। मेरा दिल बहुत छोटा है और किसी राज को छुपाने की ताकत भी नहीं है। कुछ बात करनी थी, जब तक कोई नहीं है तमाम बात कह देती हूँ।
1: खैर हो आपकी, बोलिए।
0: इस कमरे की हालत देखो। इस कमरे में रहने वाले हिलाल अमन और आराम बख्श है।
1: खुदा उसकी हिफाजत करे।
0: मेरी माँ को बहुत जल्दी है कि इस घर में एक दुल्हन आए और इस घर के लिए शामिन से अच्छी और कौन हो सकती है मेरे लिए।
1: तुम क्या मजाक कर रही हो आया? तुमने अभी अभी मेरा हाथ मांगा?
0: मुझे माफ कर दो कि मैंने बिना किसी तमहीद के इस माजरे को बता दिया। तुम्हारे बाबा से हाथ मांगने से पहले खुशी देखना चाहती थी।
1: तुम्हारे घर वाले हमेशा से काबिले एहतराम थे और हैं।
0: मुझे पता है कि तुम्हारे बाबा हिलाल से बिल्कुल खुश नहीं है। ना फकत इस बल्कि हर मुहिब्बे अहले बैत से वो नाराज है।
1: नहीं, मेरी और मेरे बाबा की नजरें एक जैसी नहीं हैं।
0: तो फिर इस तदबीर सोचूंगी कि कबूल है कहने से पहले खूब अच्छी तरह से देख सकूं, यहाँ तक कि बाद में बहाना ना बना सको तुम।

0: काश आप होते तो अपनी आंखों से अमर बिन हुरैज का चेहरा देखते, जैसे आसमानी बिजली ने उसके चेहरे को खाक कर दिया हो।
1: और खत का क्या हुआ? खत मिला?
0: खत तो मिल गया, लेकिन चूंकि रंग वाली देग में उस खत को फेंक दिया था, इसलिए नाम पढ़ने के काबिल नहीं रहे। उसने कहा कि बाबा को सलाम कहो और कहो कि हमेशा होशियार रहे।
1: नामा बर को बगैर खत के पकड़ने का क्या फायदा?
0: बेफायदा भी नहीं रहेगा। जहां तक मैं जानता हूँ, पूरा कूफा अली के बेटे की दावत के लिए बेसब्री से खत लिख रहा है।
1: हर खत के बीच उनके सरबराहों की मोहर भी है, लेकिन अम्र की उस बेहूदगी की वजह से उससे भी हाथ धो बैठे।
0: खत लाने वाला सामिया का दामाद था।
1: कौन?
0: बासित। जिंदा है। अम्र अगर हुरैज का बेटा होगा तो तमाम बदबख्तों का नाम उसकी जबान से निकलवा कर रहेगा।
2: हिनास, हिनास, हिनास, हिनास।
3: क्या हुआ आहद?
1: मेरी अजीज, अहला को तनहा मत छोड़ो।
3: तनहा नहीं, तलमा उसके पास है।
1: मेरा मतलब तुम्हारी खुद उस पर नजर रहे।
3: अंदर है।
4: जनाब शर्मिंदा हूँ, हमारे साथ चलिए, तिजारत खाने में हमला हुआ है।
5: लानत हो शैतान पर, हमारे होते हुए ये क्या हुआ?
6: आया बेटी, गम मत करो, इंशाअल्लाह बासित की रिहाई का रास्ता निकालेंगे। अपने दिल को खुश रखो कि तुम्हारे शौहर की शुजाअत, अलबत्ता तुम्हारे भाई की भी शुजाअत कि तमाम शियों की जबान पर चर्चा हो रही है।
7: खुदा अम्र बिन हुरैस की नस्ल को खत्म कर दे कि बहुत ही बेवक्त पहुंचा।
8: मुझे उसकी जान जाने का खतरा है। उन्होंने कूफे के बुजुर्ग और बच्चों के सामने उस पर रहम नहीं किया। कैद खाने में लोगों की नजरों से दूर क्या सितम ढाएंगे?
3: आप लोगों को क्या हो रहा है? डर को अपने दिल में जगह ना दे, इसका उस खुदा पे छोड़ दे। नोमान बहुत मोहतात है, वो एक शिया के कत्ल का हुक्म देने में तामुल करेगा जिसका जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है।
5: बहुत खूब, ऐसा ही है। अगर हम अपनी आवाज उठाएं तो इन बुजिलों का डर जाहिर हो जाएगा, लेकिन अफसोस है कि अलवी अब ना फरियाद कर सकते हैं और ना ही खुलकर एतराज कर सकते हैं, वरना वो खुद जानते हैं कि हम उनके नीचे दबी हुई एक आग है, कि एक रोज हम उन्हें जला कर राख कर देंगे।
7: आज मेरी नजर सिर्फ उस पर जमी थी। खुदा की कसम, उनको इस माजरे की खबर थी। इब्न हरीस पहुंचते ही सीधा बासित के पास चला गया। हिलाल ने भी देखा।
9: तुमने तो तीर मारा, ऐसे मारते कि वहीं पर ढेर हो जाता।
10: ऐसी बातें करो कि अक्ल के मुआफिक हो।
3: हिलाल,
10: इब्ने हरीस की जान लेता तो इसका बदला इस घर के दामाद की जान थी।

0: और इसी तरह तुम सबकी जान जिनका नाम उस खत में लिखा हुआ था।
1: आज की सुबह क्या सोच रहे थे और क्या हो गया?
2: आपके इसी ख्वाबो ख्याल ने मेरे शौहर की जान को खेल बना दिया।
3: हमारे दरमियान कोई ऐसा ना आशना है जो तुम्हारे दामाद के बारे में मुखबिरी कर सके? क्या तुम्हें हिलाल पर पूरा भरोसा है?

0: ये मेरे शौहर का खून बहा, मेरी औलाद पर हर माल से ज्यादा हलाल है। तुम तो हलाल और हराम और हक और नाहक को अच्छी तरह जानते हो। मेरा इतना मुंह खोलने से पहले मेरा हक क्यों नहीं दे रहे थे?
1: मेरे इख्तियार में नहीं था कि...
2: बेवजह बातों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, रहने दो, इससे अभी हमें बहुत काम है।
3: ठीक है,
2: वादा किया है कि अपना हक ले और अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे।
0: मैं कूफा से आशना नहीं हूं, उस मर्द के कब्र के अलावा जो मेरे लिए बनाई। मेरा खानदान और घर शाम में है, किसी कारवां के हवाले कर दे जो मुझे शाम पहुंचा दे, और मेरे रास्ते का खर्चा भी मिल जाए तो अच्छा है।
2: बोरे से गिरा खराब अनाज जितना दूर हो अच्छा है।
3: चलो
2: जरा ठहरो, तुम्हारे जाने से पहले कुछ पूछना चाहता हूं। तुम्हें तो मेरे घर का पता था, तो फिर मुझे ढूंढते हुए यहां क्यों आई?

0: मैं भी देखूं जरा मेहंदी से क्या बनाया हाथों पे। मुबारक हो, दिखाओ मुझे, क्या बात है।
1: अरे वाह, मेहंदी लाल हो गई, देखो ये अच्छी लगी है ना?
2: नहीं तो दोनों की एक जैसी है।
0: बहुत अच्छी है। हाँ
1: दादी जान, अभी दादा जान और बाबा जान तो नहीं है जो हमें डांटेंगे, क्या हम दादा जान की तलवार को देखने जा सकते हैं?
2: आपको खुदा का वास्ता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि तुम्हारे दादा जान को पसंद नहीं है कि उनके सामान को कोई हाथ लगाए, खुश हुसन उनकी तलवार को?
1: आपको खुदा का वास्ता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
0: तो सिर्फ एक लम्हा और एक निगाह के लिए, और सामान को हाथ मत लगाना, ठीक है?
1: ठीक है, वादा।
0: ठीक है, आज की रात तुम्हारे नाम, तुम दोनों के दिल की मुराद पूरी हो जाएगी, ठीक है? चलो।
3: ऐसा वक्त बहुत कम ही पेश आता है कि सिर्फ हम दोनों हो और कोई ना हो। मेरे गले में एक ऐसा राज फंसा हुआ है कि अगर अपनी जुबान ना खोलूं तो मर जाऊंगी।
4: खुदा की पनाह, कहो।
3: नहीं कह सकती।

0: मुझे किसी पे भरोसा नहीं। ए लड़की, 10 लुकमा रोटी और शहद लेकर आओ।
1: मैं? ऐसे तो आप अकेली हो जाएंगी। जनाब औहद ने कहा है कि आपसे जर्रा भर भी दूर ना हटूं।
0: मुझे दोबारा ना कहना पड़े।
1: जी।
2: ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है,
0: कोई पीछे से आकर खंजर ना घोंप दे।
2: काश उस रात मैं गूंगी हो जाती और तुम्हारी शाम के सफर का माजरा ना बताती। मुझे क्या पता था कि खून उनकी आंखों पर पट्टी बन जाए और अपने को गैरों से जुदा नहीं कर पाएंगे। नायला, हमारा जोर कहां और तकदीर का खेल कहां? अंजाम वही होगा जो होना है। क्या पता, शायद अगर उस रोज यजीद की दुल्हन बन जाती तो शायद ये दिन मुझे हरगिज़ ना देखना पड़ता।
0: साफ साफ बताओ मुझे, इस तरह इशारों से तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है।
2: तुम्हें क्या लगता है कि रागिब ने अकेले ही यजीद से तुम्हारी शादी की साजिश रची थी? नहीं, इन सब का फैसला लेने वाला औहद था। सब कुछ रागिब बेचारे ने अपनी गर्दन पर ले लिया ताकि औहद की आबरू रेजी ना हो।
0: बहकी बातें मत करो।
2: तुम्हारे बाबा की इज्जत यजीद के दरबार में सौदा थी, जिसकी कीमत तुम थी प्यारी।
0: क्या मतलब है इसका?
2: मतलब ये कि अपनी आंखों को सही से खोल लो और अच्छी तरह से देखो कि कैसे कल माविया का दस्त बोसा और आज यजीद का दुश्मन कुदरत की मसनद पर बैठा है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम्हें अपने बाप का चेहरा याद है? जब उसने रागिब की बेगैरती की खबर सुनी तो उसके चेहरे पे ताज्जुब देखा था। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ताज्जुब बेखबरी की निशानी है नायला। मैं औहद को भी जानती हूं और तुमको भी। अगर वो बेखबर होता और उस खबर को तुमसे सुनता तो रागिब के जनाजे को आग में जला देता, ना कि उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ता। तुमने खुद से सवाल नहीं किया कि कैसे नईम रागिब के घर को तबाह कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बाप तंबीह करने के बजाय उसे अपनी मसनद पर बैठाता है। इन जख्मों को देखो, ये तुमसे मेहरबानी का सिला है। मुझ में तुम्हारी हालत देखने की ताब नहीं थी। नायला, मैं तुम्हारी जगह नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं खुद अपनी जान का फैसला करती। अगर जेस का नतीजा मौत ही होती, ऐसे बाप के दस्तरखान पे बैठना कि जो खरीदता बेचता है और मार देता है, बिल्कुल आसान काम नहीं है।
0: मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूं?
2: हकीकत तलख है मेरी प्यारी, लेकिन इस बात को मत भूलो कि अव्वल और आखिर तुम एक कनीज की ही बेटी हो।

0: Hina! Hina!
1: खत में दस्तखत करने वालों के नाम बताओ और जाओ।
2: मरने के डर से तुमने अपनी जबान तो नहीं खोल दी, बताओ मुझे।
1: अगर ये हुसैन का हुक्म है तो इन बदबख्तों की जबान से एक एक नाम उगलवा लूंगा।
3: मेरे दिल का शिकार कर लिया और बेखबर।
4: तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो तुमने मुझ पर शक किया?
2: तुम्हें कहना है कहो, मगर अली के दुश्मन के साथ हम प्याला होना जुल्म है।
5: इतने हुरैस के जिंदान को मजाक समझ रखा है।
3: मैं ऐसे दर्द के साथ जिसने मेरी हड्डियों को तोड़ दिया और जिगर में आग लगा दी जिंदा नहीं रह सकती हूँ।
1: सारे बल्बे के पीछे
6: वालेकुम अस्सलाम।
7: शहादत इस घर वालों के लिए नाश्ता नहीं है।
8: सलमा ने अपना मुंह खोल दिया और सब कुछ बोल दिया।
5: ये जो इल्जाम इस बार मेरे ऊपर लगाया गया ये मेरा नहीं,

चुकी है। अब फर्क यह है कि चूंकि वह हमारा टाइम पीरियड नहीं था, बहुत पुराना था, और दूसरा यह कि जो जुल्म हुआ उसके बाद फिर उसको कंपनसेट कर दिया गया। अब खाने काबा हर एक को इसलिए याद है कि यजीद के हवाले से बात कही जाती है कि यजीद ने फिर काबे पे भी अटैक किया था, और उमरे और हज पर जाने वालों को यह भी बताया जाता है कि दो मरतबा तो मासूमीन के जमाने में, आइम्मा के जमाने में, दो मरतबा तो खाने काबा को पूरा गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, खाने काबा खत्म हो गया, खाली जमीन रह गई, और उसके बाद काबा बना। अब कितना उस जमाने के इतिबार से कितना कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई होगी जो आज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर खाली कोई मिंबर से कहे या आम जिंदगी में कहे, लेकिन हो चुका है इससे पहले। लेकिन उसके बाद फिर काबा बन गया और ज्यादा शान और शौकत के साथ बना। इसी तरीके से करबला, नजफ, अच्छा सामर्रा का वाकया तो आप में से बहुत सो को याद होगा जो 40 प्लस है, तो सामर्रा में भी अटैक हो, लेकिन वहां पर भी खाली गुंबद और थोड़ा सा बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। करबला में तो करबला में आका हुसैन के रोजे पर इससे बड़े जुल्म हो चुके। अच्छा, अब मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वहाबियों ने अटैक किया, ये गलत मैंने कहा। वहाबियों के अंदर भी कैटेगरीज हैं, जो जो सबसे खतरनाक है उनको आजकल हम लोग कहते हैं तकफीरी, और ये लफ्ज बहुत कॉमन हो गया है, इंग्लिश वाले भी जानते हैं तकफीरी। करबला पे मुसलसल अटैक हुए थे, बल्कि 10-15 साल तो ऐसे गुजरे थे कि एवरी ईयर करबला पे अटैक होता था। करबला नजफ, करबला नजफ, तो उसमें 1802 का वाकया बहुत अहम है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट। इंशाल्लाह तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कभी हो जाए तो आदमी को डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। कुछ वाकयात हमारे सामने ऐसे हुए कि मालूम हुआ कि कम्युनिटी या हमारी कौम डीमोरलाइज हो गई, इतना बड़ा वाकया हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इससे बड़े बड़े वाकयात हो चुके हैं। अब करबला का जो वाकया था वो उसमें सैयद अली, अच्छा अब ये मैं तफसील में चला जाऊंगा, अपने जमाने के मर्जे थे, वही स्टेटस था जो आज आगे सिस्तानी का है, या 50 साल पहले आगे खुई का था, या 100 साल पहले आगे अबुल हसन इस्फहानी का था, सैयद अली। अब चूंकि अली नाम तो बहुत कॉमन है, तो इसलिए इनकी बुक जो है उसके नाम से इनको याद करते हैं, रियाज साहिब रियाज, रियाज बुक का नाम है। खैर, ये उस वक्त मर्जे थे, तो वहाबियों ने अटैक किया। आपको मालूम है कि वहाबियों, वहाबी नहीं तकफीरी, इनका जो सेंटर है वो इलाका जहां से ये पूरा खानदान आया वो करबला से बहुत करीब है। अटैक किया करबला पे, फिर वो नजफ में भी गए थे, लेकिन नजफ वालों को जब करबला का अटैक की इत्तला मिली तो उन्होंने पहले से इंतजाम कर रखा था। खैर, और ऐसा अटैक किया कि कत्ले आम किया और इतने मोमिनीन को शहीद किया, लेकिन नारा लगा रहे थे ऐना सैयदिल कुफरा, ऐना सैयदिल कुफरा। 1216 हिजरी का वाकया बता रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो मेरी मजलिस में नहीं आते क्योंकि उनकी समझ में बात नहीं आती, यानी आपके यूथ। सैयदिल कुफरा कहां है? काफिरों का सरदार। कहां है काफिरों का सरदार? मर्जे थे, मर्जियत की अहमियत तो हमेशा से रही है, ढूंढते चल रहे थे, इनके घर पहुंच गए। अच्छा, पता चला कि आ रहे हैं, तो इन्होंने घर के तमाम फैमिली मेंबर्स को, खवातीन वगैरह को, अब मैं क्या जुमले कहूं कि उस अटैक पे के अंदर खवातीन को भी बेइज्जत और बेआबरू किया गया, क्योंकि उनके एतबार से तो वही स्टेटस था कि ये काफिर हैं, तो काफिरों की औरतों को स्लेव बना सकते हो। खैर, सारी बातें बयान करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है। मेरा अपना जो वादा था कि आज से मैं सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा, तो वही वादा मेरे हाथ से फिसल रहा है, लेकिन ये वाकया जरा अहम है। इनके घर पे अटैक किया, असल में तो इमाम के रोजे पर और इनके घर, ये दो उनके टारगेट थे, और रास्ते में जो मोमिन आया उसको वो ये समझ के शहीद करते गए कि काफिर को मार रहे हैं इसको सवाब मिलेगा, जो हम पाकिस्तान में टेररिस्ट लोगों को देख चुके हैं। तो अब इनके घर पहुंचे तो खवातीन को और घर वालों को निकाल दिया, एक छोटा सा बच्चा 4 महीने 5 महीने का वो घर में रह गया, ये इसको उठाने गए और घर का दरवाजा तोड़ के पूरी वो फौज अंदर दाखिल हो गई। अब ये जल्दी से इधर उधर, क्योंकि जान बचाना तो इस्लाम में वाजिब है, तो वहां पे गए कि जो स्टोर था उसमें गए, वहां टोकरी थी बास्केट, उसके नीचे बच्चे को लेके बैठ गए। पुराने जमाने में घरों के अंदर कुकिंग वगैरह के लिए ये गैस या ऑयल ये सब तो इस्तेमाल नहीं होता था, लकड़ियां इस्तेमाल होती थी, तो हर एक के घर में बहुत बड़ी मकदार में लकड़ियां होती थी, वो रोज खाना पकेगा
तो अब वो लोग वहां पहुंचे, स्टोर में ढूंढ रहे हैं तो नजर नहीं आया, तो लकड़ियां उठा के देखने लगे, लकड़ियां उठा उठा के

टोकरी पे फेंक रहे, कितना ये दब गए कि शहीद हो जाना चाहिए। खैर जब नहीं मिले वो लोग चले गए। उसके बाद कुछ मोमिनी ने कहा हम यहाँ आए, अब ये इतने दबे हुए हैं कि खुद से निकल नहीं सकते। चुनाचे फिर उन्होंने आके लकड़ियों को हटाया, टोकरी को उठाया, और अजीब बात ये थी कि इस पूरे वाकये के दरमियान वो बच्चा वो एक सेकंड के लिए ना बोला ना रोया ना उसकी आवाज बुलंद हुई। तो बहरहाल ये इनके मौजजात में आता है, मैं और तफसील में नहीं जाना चाह रहा। अब खुलासा यह है कि जब ये बाहर निकले तो सबसे पहला इनके जहन में मर्जे ख्याल ये था कि मेरे घर पे अटैक हुआ, आका हुसैन के रोजे पे इन्होंने क्या किया होगा, जैसे 30 साल पहले सद्दाम ने जिस तरह से करबला में अटैक किया, और वो भी आपको वाकया मालूम है कि उसका अपना दामाद फौज को लीड कर रहा था और ये तय के लीड कर रहा था कि तू भी हुसैन है मैं भी हुसैन हूँ, देखता हूँ आज कौन हुसैन जीतता है, कमाल हुसैन, जिसे बाद में खुद सद्दाम ने ही मरवा दिया, वो फिर अलग बात हो जाएगी। तो अब वापिस आ जाइए असल मौजू पे, सीधा ही लोग खुद ये और इनके साथ जो इनके बहुत ही करीबी शागिर्द थे सीधा हरम में गए देखा, और ये ओनली कंफर्म रिकॉर्डेड हिस्ट्री का वाकया, वरना इससे मिलते जुलते एक आध वाकयात और भी हैं लेकिन वो कंफर्म नहीं। वो क्या वाकया, जब पहुंचे तो देखा कि इमाम मजलूम के रोजे पे अटैक किया था इन्होंने, जरी को उस वक्त लकड़ी की जरी होती थी, जरी को उन्होंने जला दिया था, उसकी लकड़ियों से इन्होंने कहवा बना के पिया था, जबकि उस वक्त के तकफीरियों के पास कहवा हराम था, लेकिन सिर्फ तौहीन के लिए, और कब्र को इतना खोद दिया था कि सैयद अली मर्जे वक्त जैसे आगा सिस्तानी को चीज रिपोर्ट करे, और उनके करीब तरीन शागिर कह रहे हैं कि इमाम मजलूम के कंधे का एक हिस्सा भी नजर आ रहा था, और ये ओनली जो कंफर्म रिकॉर्डेड हिस्ट्री उसमें यही एक ही वाकया है, और बहुत सारे आपको कुछ ख्वाब भी मिलेंगे, कुछ खुदाम के वाकयात मिलेंगे कि हम बेसमेंट में गए तो ये देखो, कोई कंफर्म नहीं, ये कंफर्म। अब जैसे ही ये देखा दोनों ने आंखें बंद कर ली, यानी आंखें का मतलब निगाहें नीचे कर ली कि नहीं इमाम मजलूम के जिस्म पे निगाह नहीं डालना है। बस इतना एक काम किया कि उस वक्त इमाम मजलूम के कंधे पर जो कुछ मिट्टी थी ना वो इन्होंने झाड़ के अपने रूमाल में, रूमाल फौरन रेड कलर का हो गया, और ये इसी तरह से निगाहें नीची करके बाहर आ गए। इसके बाद तो फिर वो जरी बनी, सब कुछ हुआ। तो आप देखिए कि यहां तक करबला का ये वाकया यहां तक हुआ कि अटैक हुआ, जरी तो खैर तोड़ी गई जैसे सामर्रा में गुंबद, लेकिन कब्र इमाम तक पहुंच गए थे वो लोग, और इमाम का जिस्म नजर आने लगा था, फिर वो वहां से वापस पलटे कि नहीं पहले मर्जे को ढूंढ के शहीद करना है फिर नजर आएंगे। वो वाली जो मिट्टी थी जो सबसे कन्फर्म खाके शिफा, वो फिर इस खानदान में, ये दो आदमी गए थे ना, इन दोनों के खानदानों में ये जनरेशन बाय जनरेशन चलती रही, और जहां बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी वहां पे इस्तेमाल की जाती थी, अब शायद दुनिया में कहीं नहीं। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म खाके शिफा है जो बाकायदा इमाम मजलूम के जिस्म पर जो कंधा था उसके ऊपर हल्की सी वो मिट्टी नजर आ रही थी। अच्छा, अब ये मैंने जो वाकया बताया वो एक तो वजह ये बताना थी कि इतने बड़े बड़े सदमे गुजर चुके हैं, ट्रेजिडी हो चुकी है, वाकयात पेश आ चुके हैं, लेकिन अब यह है कि दोबारा आपने देखा रोजा भी बना, जरी भी बनी, लकड़ी की जरी से सोने की जरी में बदल गया, दुश्मन का हर हमला जो है और ज्यादा ताकतवर करता है तशय्य और शियत को, तो हमें मायूस नहीं होना है, डिमोरलाइज नहीं होना है। अगर हमारे जमाने के हालात और वाकयात में कभी कोई बहुत बड़ा वाकया भी पेश आ जाए, कोई बड़ी शहादत भी हो जाए, रोजों पे भी अटैक हो जाए, तो यकीनन गम तो होगा, सदमा तो होगा, लेकिन हमारा हौसला पस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इससे पहले भी ये हो चुका है, और सबसे बड़ी बात कि हमारा वली और वारिस जिंदा है जिसे हम आशूरे के दिन याद करेंगे, बाकी बातें वहां होंगी। मगर उसको जब हम याद करेंगे तो एक बात का हमें ख्याल रखना, बस यहां से मेरा असल मौजू शुरू हो रहा है, आज असल मौजू की भी एक आध तमहीदी बातें होंगी लेकिन शुरू हो रहा है, उसको याद तो रखना। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी के एक्सपेक्टेशन के खिलाफ कोई चीज हो जाती है, जिसको क्या एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं अंग्रेजी में, कि आप में से हर एक, आपसे मतलब मैं भी शामिल इंक्लूडिंग मी, जमाने के इमाम का इंतजार तो इतना ज्यादा कर रहे हैं और बार बार ये कह के कर रहे हैं कि वजअलनाकुम वइय्याकुम मिन अत्तालिबीन बिसारही मा वली अहल इमाम अल महदी आल मोहम्मद, कि अल्लाह हमें और तुम्हें इमाम जमाना के उन साथियों में शामिल।

रेफरेंस बहुत देते होंगे आगा सिस्तानी के मसाइल की जो कंप्लीट बुक है मिनहाज सवालिहीन, ये असल में लिखी थी आगा मोहसिन हकीम ने, इतनी अच्छी किताब थी कि मैं आगा खुई ने इसी में जहां जहां अपने फतवे थे नोट डालकर इसी किताब को रखा, फिर आगा सिस्तानी ने उसमें हदीस, यानी इसी तरह से इस हदीस को आगा सिस्तानी ने बाकी रखा जो आगा मोहसिन हकीम ने लिखी, और जो मर्जे जब कोई हदीस कोट करता बहुत स्ट्रॉन्ग हदीस, बहुत मशहूर हदीस। और आप देखेंगे कि इसके अंदर दो बहुत ही अहम मसले बताए गए हैं जो 21st सेंचुरी के, रोवे यानी नबी तहरीर है कि पैगंबर इस्लाम से ही हदीस रिवायत की गई है कि पैगंबर ने कहा कि तुम लोगों पर कैफा बेकुम, तुम लोगों पर क्या गुजरेगी जब तुम ये देखोगे तुम्हारी औरतें खराब हो गई हैं और तुम्हारे शबाब नौजवान जो है वो फासिद हो गए, खास लेडीज को और खास यंगस्टर को, यूथ को। इस हदीस में ये लफ्ज आया है, आप जाके देख भी सकते हैं क्योंकि किताब तो मौजूद है इंटरनेट पे पीडीएफ में, ये पैगंबर की हदीस चल रही है। अच्छा, अब इसके अंदर चार चीजें बताई, कैफा देखो तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम ये देखोगे कि तुम्हारी औरतें खराब हो गई हैं, तुम्हारे नौजवान फासिक हो गए, और ये पैगंबर का जुमला इशारा कि आखिरी जमाने के अंदर हमारे दुश्मन यानी इस्लाम के दुश्मन इन दो को टारगेट करेंगे, और लम तामरु बिल मारूफ है वलम तन्हा अनिल मुनकर, और सोसाइटी की हालत यह है कि तुम नेकियों का हुक्म देना बंद कर दोगे और गुनाहों से रोकना बंद कर दोगे। अब मैं एक जुमला और यहां अर्ज कर दूं जिसकी वजाहत जरूरी है कि बास चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट में आके इस तरह मशहूर हो गई जो इस्लाम के बेसिक वैल्यूज के अगेंस्ट, और उनमें से एक यही थी कि देयर इज नो फ्री लंच, एक ये है कि माइंड योर ओन बिजनेस। तो अब यह है कि यह बात सही भी, इस्लाम में प्राइवेसी का इतना सख्त हुक्म है कि आप आगा सिस्तानी के फतवे को जाके देख लीजिए, शौहर को आप नहीं है कि बीवी की मेल चेक करे या लेटर चेक करे या उसके मोबाइल में एक्सेस करे, इसी तरह बीवी का कहीं और मैं जा रहा हूं वापस आता हूं, तो आप ये के नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप बड़े बड़े गुनाह आपके सामने हो और आप खामोश रहे। अच्छा, उसका एक तरीका होता है, वो बाद में आएगा, आएगा आएगा, अभी आपको रिजल्ट ना निकालिए। पैगंबर ने ये चार चीजें बताई, इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अच्छा मजमा हैरान हो गया, उस वक्त का मजमा जिसे पैगंबर ने 23 साल की मेहनत के बाद कन्वर्ट किया और वो अच्छे लोग हो गए थे, यानी हदीस में सलमान फारसी का नाम, हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह क्या ऐसा भी कभी हो सकता कि हमारे सामने गुनाह और हम कुछ ना बोले, हमारे सामने वाजिबात को छोड़ा जाए हम इसका हुक्म ना दें। पैगंबर ने कहा इससे भी बुरा होने वाला, और इससे बुरा ये होगा कि कैफा बेकुम तुम पे क्या गुजरेगी, इजा अमर तुम बिल मुनकर व नहो अनिल मारूफ, उल्टा हो जाएगा, तुम लोग गुनाहों का एक दूसरे को हुक्म दोगे और तरवीज करोगे और शौक दिलाओगे और नेकियों से लोगों को रोकोगे। एक तो है कि खामोश रहो कुछ बोलो ही नहीं, उसी में मजमा हैरान था, कौन सा मजमा, आज का मजमा नहीं, पैगंबर के ट्रेन असली और सिंसियर साहब कि ये कैसे हो सकता। पैगंबर ने कहा इससे भी बुरा होगा, गुनाहों का हुक्म दिया जाएगा नेकियों से रोका जाएगा, जो कल एक जुमला मैंने 3 मरतबा कहा लेकिन तीनों मरतबा इनकम्प्लीट कहा कि भाई मसला नजरदारी के हवाले से बात है लेकिन कोई और भी आप इसमें नेकी ले आए, एक डॉलर भी हम नहीं देंगे, ये आजादारी का सिस्टम हमें पसंद नहीं, चले आपकी मर्जी ना दी, लेकिन दूसरों को रोकेंगे भी कि नहीं खर्च यहां नहीं करो और जगह है खर्च करने की। तो बहुत छोटी सी मैंने मिसाल जो थी वो थी, पैगंबर ने कहा कि गुनाहों का हुक्म दिया जाएगा और नेकियों से रोका जाए, मजमा तो उछल पड़ा, भाई पैगंबर के जमाने का मजमा है वो, या मेरा वाला मजमा तो है ना कि लोग चुपचाप बैठे हो, ना आ हो ना वाह हो, ना कोई एक्शन हो ना रिएक्शन हो, जो मुझे पसंद भी है कि ताकि मुझे ज्यादा टाइम मिले, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं यार रसूल अल्लाह क्या इतना बुरा जमाना भी कभी आ सकता है, उनकी समझ में नहीं आ रहा। पैगंबर ने कहा कि तुम इसी में हैरान, अब इससे भी ज्यादा बुरा होगा। अच्छा, अब ये हदीस में क्यों पढ़ रहा हूं, इसके आखिरी लफ्ज की वजह से पढ़ रहा हूं, वरना हदीस तो काफी मशहूर भी है और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रिजवी साहब ने कई बार पढ़ी भी होगी। तीसरा जुमला, पैगंबर ने कहा तुम ये दूसरी बात पे हैरान हो, क्या ऐसा जमाना आएगा कि लोग गुनाहों को एक दूसरे को हुक्म दिया करेंगे या शौक दिलाएंगे कि फला गुनाह करो। पैगंबर ने कहा इससे भी बुरा जमाना आएगा, कैफा बेकुम इजा रअयतुम अल मारूफा मुनकरन वल मुनकरा मारूफा, वो जमाना आएगा जब तुम देखोगे कि नेकियों को तो बुरा समझा जाएगा जैसे किसी ने गुनाह कर लिया
और गुनाहों को नेकी समझा जाएगा।

कोई गुनाह करके आएगा तो ऐसा आएगा जैसे वो पूरी रात शब कदर की अमाल करके आ रहा। अच्छा, अब ये पैगंबर का तीसरा जोन है। मैं अपना एक पर्सनल वाकया बता दूं, मेरा तो नहीं है, मेरे एक बहुत ही करीबी बुजुर्ग दोस्त थे, दोस्त भी थे बुजुर्ग भी थे, क्योंकि कराची से मैं हज का काफिला ले जाता था, लाहौर से वो लेके आते। लाहौर पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर शहर है और वो बहुत अहम शहर, बहुत कल्चर शहर। आप लोग तो लाहौर खाली वो रेस्टोरेंट के नाम से जानते होंगे कि दुनिया में हर जगह इस्लाम का कोई रेस्टोरेंट होता, मुझे नहीं पता यहाँ है कि नहीं, लेकिन एक जनरल बात। वो फरमा रहे थे कि एक साहब मेरे पास आए, वो बहुत पुराने आलिम थे लाहौर के, उनके वालिद उस मस्जिद में इमाम थे, उसके बाद वो इमाम बने, उसके बाद उनके बेटे इमाम बने, तो बहुत यानी फैमिलीज टर्म हो गए थे पूरी कम्युनिटी से। कि एक साहब मेरे पास आया और कहा कि मौलाना मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पेश आ गया, यह रियल वाकया। अब वो प्रॉब्लम ये पेश आ गया है, मुझे अपनी बेटी के बारे में बड़ी परेशानी। अब आलिम के पास लोग क्यों आते हैं, या दुआ के लिए, या तावीज के लिए, या कभी कभार नमाज जनाजा के लिए, वरना पहले निकाह के लिए भी आते थे, अब तो जरूरत नहीं है, खुद ही सारे काम हो जाते हैं। तो अब ये मौलाना यही समझे कि मेरे पास ये कोई दुआ तावीज के लिए आए होंगे। दुआ बहुत ताकत है, बहुत अहमियत है। हत्ता आशूरे के दिन आपको याद होगा कि आका हुसैन ने आका सज्जाद के पास जाकर कंधे पे हाथ रख के कहा था, ये दुआ मैं बता रहा हूं, ये मेरे शियों को पहुंचा देना कि जब कोई प्रॉब्लम पेश आई ये दुआ पढ़ी। कब? आखिरी लुसत के वक्त, जब अकबर हो, असगर हो, अब्बास हो, कासिम हो, कौन हो, मोहम्मद शहीद हो चुके, फिर भी आपका ख्याल किया, मेरा ख्याल किया आपने। ये आशूर की मजलिस में थोड़ा सा बयान करूंगा। दुआ दी, यानी दुआ दी का मतलब यह है कि हमें गिफ्ट किया है दुआ की शक्ल में। तो खैर, दुआ तो है बहुत अहम चीज। अब इनके जहन में आया कि बेटियों के लिए क्या मसले होते, ज्यादातर यही होते कि अगर गैर शादी शुदा है तो शादी नहीं हो रही है तो कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, शादी शुदा है तो औलाद नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम हो रही है, या ये कि जहां गई है उस फैमिली के अंदर जिसे उर्दू में ससुराल कहते हैं, सास और नंद और ये सारे झगड़े, यही प्रॉब्लम होते हैं बेटियों। मौलाना ने कहा बेशक आप बताइए, मैं आपके लिए दुआ ढूंढता हूं। कहा मेरा मसला यह है कि मेरी बेटी ना किसी नामहरम से हाथ मिलाती है ना किसी नामहरम के सामने जाती। मैं दोस्तों के घर जाता हूं, उनकी बेटियां उछल उछल के आती हैं, हाय अंकल, वाय अंकल, बाय अंकल, जो कुछ भी कहती रहती हैं, कभी हाथ भी मिला लेती हैं, इसी तरह से न सर पे दुपट्टा है ना कोई स्कार्फ। अब मेरे घर में मेरे दोस्त आते हैं तो मेरी बेटी जाके कमरे में छुप जाती, क्योंकि एक बार वो स्कार्फ पहन के किसी दोस्त के सामने आ गई थी, दोस्त तो नाराज हो गए, क्या मेरे बारे में तुम कोई बुरा ख्याल सोच रही हो, क्या मैं तुम्हारे बारे में कोई बुरी चीज सोचूंगा, मैं तो तुम्हारा चचा हूं, तुम्हारा अंकल हूं, और ये अब ये स्कार्फ पहना तो उसको एतराज हो गया कि ये जो है मेरे बारे में बुरा ख्याल रखती, तो वो आती ही नहीं है बात। हाथ मिलाना तो दूर की चीज, मौलाना कोई इलाज कीजिए। आज 20th सेंचुरी, ये बात है 50 साल पहले, ऐसी लड़की कैसे चलेगी माशरे के अंदर। मौलाना कह रहे कि मेरे पास क्या जवाब था। मैंने उससे कहा भाई चंद किताबों के नाम लिया, टाइम वेस्ट हो रहा है, मिसबा और इकबाल और मफाती, और मैंने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, बीमारी की दुआ मुझे नजर आई है और औलाद की दुआ नजर आई है और रिस्क की दुआ नजर आई है और कर्ज की दुआ नजर आई है, अब तक इमाम की तरफ से बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती की दुआ नजर नहीं आई है। जिस दिन मेरी नॉलेज में आई मैं सबसे पहले आपको बुलाते ही दूंगा। अब ये 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब ये मीडिया वीडिया कुछ नहीं था, उस वक्त की हालत ये थी कि जो क्वालिटी अच्छी है उसको बुरा समझा जा रहा है, और जो बुरी क्वालिटी है कि जी वो हमारे दोस्त की बेटियां तो इसी तरह आके हाथ मिलाती हैं, गले लग जाती, उसको अच्छा समझा जा रहा है। पैगंबर ने कहा, अभी इसकी बहुत मिसालें, मैं लेडीज की मिसालें ज्यादा इसलिए देता हूं कि मेरे सामने नहीं होती है ना, आपके बारे में कहूं तो आप तो ऐसा मुझे घूरने लगते कि मजलिस पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो खैर, खुलासा ये है कि लेडीज का बहुत एहतराम है, मैंने अर्ज किया ना कि इस्लाम में मर्जी आजाद आई और लेडीज, लेकिन ये अभी बात की मजलिस है। आज सुन लीजिए आखिरी बात, ये हदीस मैंने पूरी क्यों पढ़ी, क्यों थोड़ा बहुत तो हम देख रहे हैं कि वाकई आज अच्छाइयों को बुराई समझा जा रहा है, और जो बुराई है किसी में उसको अच्छाई समझा जाता है, ये इसका प्लस पॉइंट आता। फिर पैगंबर ने कहा जब ये होगा, हाँ ये था लग, जब ये होगा तब जमीन भी तुम पर बंद हो जाएगी और आसमान भी तुम पर बंद हो जाएगा, ना आसमान से अल्लाह का फजल और बरकत नाजिल होगी ना जमीन में कोई तुम्हारी मदद करने वाला हो, ला नासिरा फिल अर्ज, जमीन में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा और आसमान से कोई बरकत नाजिल नहीं होगी। तो वो जो हम दुआ पढ़ रहे हैं इमाम जमाना के आने से पहले के, इलाही अजमल बला व बरे अल खफा वन कतर रजा व जाकत अल अर्ज व मनियत अस समा।

उसमें आखिरी जो दो बातें थी, जमीन तंग हो गई या आसमान बंद हो गया, पैगंबर फरमा रहे हैं उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी हो सकता कि तुम्हारे गुनाह उस स्टेज पर पहुंच गए जहां नेकियां बुराई बन जाए और बुराइयां नेकी बन जाए। अगर ये स्टेज आ गया और फिर आसमान बंद हो गया तो अल्लाह से कंप्लेन ना करना, ये तुम्हारे अपने अमल का नतीजा है। जैसा कि मैं हजरत मूसा का वाकया पढ़ रहा था, लेकिन मैं उसको रोक देता हूँ, इंशाल्लाह कल आएगा, वाकया बहुत अहम, मेरा असल मौजू जो है ना ये उसके अंदर। और मैं ये अर्ज करूं कि मैं बात अभी जो करूंगा, पहली बात जो अकीदा और अमल कि इस्लाम में सबसे बड़ी क्वालिटीज में से मोमिन की एक क्वालिटी बताई गई है ट्रस्ट ऑन अल्लाह, ये बहुत अहम सिफत, बहुत अहम, तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करो। ये सारे गुनाह वगैरह क्यों होते हैं, अल्लाह पे हमें भरोसा नहीं, ये बात कल आएगी, लेकिन अर्ज ये कर रहा हूं कि जो हमारे ये वाले प्रॉब्लम है उसके दो रीजन हो सकते हैं, 50-50, या तो अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा, इम्तिहान ले रहा है तो हम दुआ के जरिए से इस इम्तिहान का टाइम पास करेंगे, और या वाकान हमारे अमाल इंडिविजुअल के या कम्युनिटी के ऐसे हो चुके कि जो थर्ड स्टेज आया था कि हमारे यहां बुराई अच्छाई बन गई और अच्छाई बुराई बन गई। अगर ये है और फिर हमारे लिए जमीन भी तंग हो गई है, ला नासिरा फिलर, जमीन में कोई मददगार नहीं और आसमान से कोई रहमत और बरकत नहीं आ रही, तो ये वक्त तौबा है कि अभी समझ जाओ, वरना वो आने वाला जब आएगा तो खाली खैरों ही के ऊपर इस्लाम को नाफिज नहीं करेगा, अपनों पर भी करेगा। वो स्टोरी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कौन सी स्टोरी? मौलाए कायनात को जब खलीफा बनाया है मुसलमानों ने, आप मुसलमान, अल्लाह ने तो मौला को रोज अजल से खलीफा रसूल बनाया है, आप मुसलमान हुआ क्या? पहले तो बहुत जोश के साथ आए थे, एक जुमला मैं कह रहा हूं, आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, ये खाली एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि जितने जोश के साथ आप इमाम जमाना को याद करते हैं इसको 10 टाइम्स बढ़ा दीजिए, इतने जोश और एक्साइटमेंट के साथ अली को ढूंढते हुए आए थे कि अली को अपना हाकिम बनाना। हम तो क्या तड़प रहे होंगे, मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, तो जनरली एक जुमला कह रहा हूं, उससे ज्यादा है, यानी अली ने वापिस कर दिया, चले जाओ मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी खिलाफत, खिलाफत जो तुम देते हो मौला के सामने, उस पर एक बहुत ही पुरानी जूती थी जिसको मौला ठीक कर रहे थे, कहा तुम्हारी दीवी खिलाफत इस जूती से भी ज्यादा हकीर है, नहीं जाइए अली को, कर रोजे कयामत हम कंप्लेन करेंगे कि हम तो राजी हो गए थे, हम यानी जुमला तो ये नहीं है लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने तो तौबा भी कर ली अपनी गलती पर, फिर भी अली नहीं मान रहे। तो मौला ने कहा ठीक है, तुमने इत्माम हुज्जत कर दिया, मैं आऊंगा लेकिन तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। यही जुमला, सेम जुमला इमाम जमाना ने अपनी गैबत में कई बड़े बड़े मराजे से कहा कि मैं आ तो जाऊंगा लेकिन इस वक्त हमारे मानने वाले इस स्टेज पर नहीं है कि हमें कबूल करें या हमें बर्दाश्त करें, लेकिन इस वक्त मैं दोनों को मिलाने जाऊंगा, तो अब वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, कल मुझे दुआ तक शॉर्ट करना पड़ी थी टाइम की वजह से। तो खुलासा यह है कि मौला ने कहा नहीं, कहा नहीं मौला, हम कयामत के दिन अल्लाह से आपकी कंप्लेन करेंगे, जब हम राजी हो गए, हमने तौबा कर ली, हम आपके दरवाजे पे आ गए, हम गदीर के ऐलान को मानने लगे, फिर भी आप मना कर रहे। अली ने कहा ठीक है लेकिन मुझे पता, और हुआ यह कि अगले दिन अली मस्जिद में पहुंचे, आज तक रसूलुल्लाह के बाद मस्जिद नबवी में इतना क्राउड नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह से भी ज्यादा था, क्योंकि रसूलुल्लाह के जमाने तक इस्लाम खाली अरब के आइलैंड में था, और अब रसूल के बाद ईरान और रोम और मिस्र, इतनी तादाद बढ़ गई। मौला ने पहला ही अमल ऐसा किया कि मजमा घबरा गया, मौला आए मिंबर पे तशरीफ ले गए। अच्छा, पैगंबर सबसे ऊपर बैठते थे तो इनके बाद जो हुक्मरान आए तो वो एक सीढ़ी नीचे बैठे एहतराम रसूल, उनके बाद आए एक सीढ़ी और नीचे बैठे एहतराम रसूल, उनके बाद आए तो एक सीढ़ी और नीचे बैठे, ये जो मेंबर के मुख्तलिफ ये स्टेयर्स होते। मौला सीधा मजमे को क्रॉस करते हुए 1-2-3 स्टेयर्स को तय करके ऊपर आके मेंबर पर बैठ गए, तो मजमा तो वही हैरान हो गए। मौला ने देखा कि इस वक्त मजमा जो है थोड़ा डिस्टर्ब है, मेरी तकरीर सुनने के मूड में नहीं लग रहा, झुक के कहा कि क्या हो गया तुम लोगों, तुम्हारी इन्विटेशन पर आया, कहा कि आ रहे तो थे लेकिन क्या आप रसूलुल्लाह के बराबर हो गए कि वहां जाके बैठे या रसूलुल्लाह बैठे। जलाल आ गया अली, मां हाजिल आवाज, तुम लकड़ियों की बात करते हो, लकड़ियों की क्या अहमियत है, मेरे कदम तो दूसरे रसूल पे पहुंच चुके, तुम खाली लकड़ियां देख के हैरान हो के अली के पैर वहां कहां गए जा रसूल के पैरों पर दूसरे।

मान आवा में जा रहा हूं क्योंकि हुर करीब आता है, घोड़े से उतरता है, जेब से रुमाल निकालता है, दोनों हाथ बांधता है, आवाज देता है, ए रहमतुल लिल आलमीन के बेटे, क्या दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार तेरी बारगाह में आ सकता। भाई ये जुमला सुना था हुसैन घोड़े से नीचे आ गए, आगे बढ़े, हुर को देखा का अंत अखीफ दुनिया वाल आखिरा, हुर ये क्या कह रहा, तू तो मेरा भाई है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये जुमला सुनना है कि एक मरतबा पूरा लश्कर इमाम घोड़ों से उतर आया, आका का भाई जमीन पे खड़ा है, हम घोड़ों पे कैसे बैठे। लेकिन फिर हुसैन ने एक जुमला कहा, अब वो जैसे हुर को किसी ने कोड़ा मारा, हुसैन ने कहा हुर आज मैं बहुत खुश भी हूं, बहुत खुश भी हूं और बहुत गमगीन भी हूं। खुश इस बात पर हूं कि तूने बातिल को छोड़ा हक पर आ गया, जुल्मत को छोड़ा नूर पे आ गया। गमगीन इस बात पर हूं जब तू मेरा दुश्मन बन के आया था तो इतना पानी पिलाया था कि तेरे घोड़े तक सैराब हो गए थे, आज मेरा मेहमान बन के आया और हुसैन पानी का एक कूजा भी तुझे पेश नहीं कर सकता। ये जुमला क्या था, गोया हुर के बदन में किसी ने कोड़ा मारा। कहा मौला यही गुनाह माफ कराने आया हूँ और मेरा गुनाह मुकम्मल माफ हो जाए इसलिए मैं चाहता हूँ पहले मेरा बेटा मारा जाए, मैं ये सदमा देख ये इम्तिहान दूं और फिर मैं अपनी जान दूंगा। हुसैन ने कहा आम दिन होते मैं तुझे कभी ना जाने देता, लेकिन आज तो हर एक को मारा जाना है, अव्वल और आखिर की बात है, सबको मारा जाना है, जा मैंने इजाजत दी। हुर का बेटा चला, हुर ने कहा बेटा ऐसा जिहाद करना कि तेरे बाप का गुनाह माफ हो जाए। हुर के बेटे ने जिहाद शुरू किया, आखिर में घोड़े से गिरा, आवाज दी बाबा मेरी मदद को आइए। बहरहाल बाप तो बाप होता है ना, ये जुमला सुनना था और बेचैन होके खड़ा हो गया, बेटे की तरफ जाना चाहता, हुसैन ने रोका, बस आखिरी मेरे दो जुमले, हुसैन ने रोका। हुसैन ने कहा हुर रुक जा, तू नहीं जाएगा, तेरे बेटे के लाशे पर मैं जाऊंगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि तू मेरा मेहमान है, मेरी जिम्मेदारी है तेरी खिदमत करूं, चले ठीक है। दूसरा जुमला आप बर्दाश्त कर सके तो बर्दाश्त कीजिए, वो आखिरी जुमला। और हुर सुन, दूसरी बात सुन, याद रख कभी बूढ़े बाप जवान बेटों के लाशे पे नहीं जाया करते हैं, तू बैठ मैं लाशा लेके आता हूँ, बस आपा हाथ जोड़कर एक जुमला कहना है। हुर का बेटा घोड़े से गिरे तो बाप को रोक दिया जाए कि बूढ़ा बाप नहीं जाता, जब कलेजे पर बर्छी का फल खाकर 18 साल का अकबर घोड़े से जमीन कर्बला पे गिरा होगा, मौला ये बूढ़ा बाप किस तरह जवान के सराहने को। खुदावंदा आका हुसैन के इस इम्तिहान का वास्ता जितने गिरिया करने वाले हैं और जितने मोमिनीन और मोमिनात हैं इन सबको हर परेशानी से महफूज फरमा, इन मजालिम के इंतकाम के लिए जहूर इमाम में ताजील फरमा।

0: और कहते हैं जिसको यारो ये फिदिया था हुसैन, और कहते हैं जिसको यारो ये फिदिया था हुसैन इब्ने अली।
1: हुसैन शहीद करबला व वैला, हुसैन शहीद वैला, अब्बास अलमदारम शिशुद व वैला, हुसैन शहीद वैला, अज़ु अला इमामिकुम व वैला, हुसैन शहीद कर व वैला, असगर शिरखारम शिश

इनका। सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, सलाम अलैक या अमीर अल मोमिनीन, सलाम अलैक या फातिमा ज़हरा सैयदत निसा अल आलमीन, सलाम अलैक या हसन अल मुज्तबा, सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन।

ये हमारा एक गोल है जो हमने पहले दिन सेट किया। और जिस जमाने में आप जिंदा हैं उस जमाने से करबला को अगर आप तत्बीक ना दें, आप करबला को एक हिस्टोरिक इवेंट सिर्फ समझें और आज की दुनिया में करबला का असर आपको नजर ना आए, तो आपने करबला के साथ जस्टिस नहीं किया है। इमाम हुसैन ने कहा मिसली ला युबा या मिसला, कहा मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, ये नहीं कहा मैं यजीद की बैत नहीं करूं। इमाम हुसैन ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि जब तक जहूर नहीं हो जाता या जहूर के वक्त तक हर जमाने में यजीद भी रहेगा हुसैनियत भी रहेगी। हम इन मजलिसों के जरिए से एक सवाल का जवाब चाहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि क्या इस जमाने में, जमाने गैबत में मैं अपने आप को इतना तैयार कर सका हूं कि मैं आज के खैमे हुसैन या खैमे मेहदी में शामिल हो सकूं? अगर मैं खैमे हुसैन में शामिल ना हूं और मेरे पास सब कुछ हो तो मैं कामयाब हूं या फेलियर हूं? फेलियर हूं मैं। तो असल खैमे हुसैन तक पहुंचना है। अज़ीज़ाने गिरामी, देखिए मोहब्बत से मारिफत और मारिफत से इताअत, ये स्टेप्स हैं। आज आपके सामने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कुछ चीजें पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। देखें कूफा में लोगों ने खत लिखा इमाम हुसैन को और 30,000 के आसपास रिवायतों में हैं कि खत आए थे इमाम हुसैन को कि आ जाओ और मैं, हम आपका साथ देंगे। सवाल, मोहब्बत है? हाँ। दावत है? हाँ। ये भी दावत है कि आई एम रेडी टू सपोर्ट। मुस्लिम आए, 30,000 लोगों ने बैत की, बैत भी कर दी, फिर क्यों ऐसा हुआ कि मुस्लिम उसी कूफा में तन्हा रह गए? और करिएगा, इमामत और विलायत से दो किस्म के नजरिए हैं। एक ये है कि मैं इमामत को इसलिए मानता हूं क्योंकि इमामत मुझे फायदा दे रही है, और एक ये है कि मैं असहाब अली और असहाब हुसैन की तरह सिर्फ इस तलाश में हूं कि मैं इमामत को कैसे फायदा दे सकता। कूफा वालों ने जब खत लिखा तो खत किस किस्म के लिखे आप सोचिए, गौर करिए। खत लिखा कि वक्त आ गया है, फ्रूट्स काटने का वक्त आ गया है, अभी आप आ जाएं, हम लोग मिल के हुकूमत बनाएंगे और जब हुकूमत बनेगी तो मिल बांट के खाएंगे। इमाम को बुला रहे हैं अपनी दुनिया को आबाद करने के लिए। हजारों का लश्कर है, हजारों लोग हैं आ रहे हैं साथ में, लेकिन जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आता है और माहौल बदलता है क्या होता है? यही कूफा में कोई मुस्लिम का साथ नहीं देता। मैं अपने आप से सवाल करूं कि मेरे दिल में आज जो मोहब्बत है वो कौन सी मोहब्बत है? बुलाने वाली मोहब्बत है या आखिरी लम्हे तक खड़े रहने वाली मोहब्बत है? मैं एक मिसाल से आज की बात का आगाज करना चाहता हूं। मौलाना रूम एक मिसाल देते हैं लैला मजनू की।

एक बार एक मजनू होता है, वो घूमते घूमते लैला के महल के सामने आ जाता है। लैला प्रिंसेस होती है, तो जब लैला के महल के सामने आता है, दरबान से पैगाम पहुंचवाता है कि जाके लैला से कहो कि मजनू भूखा है। मजनू भूखा है। लैला खाना परोसती है, भिजवा देती है, फिर कहता है भूखा है, फिर लैला खाना भिजा देती है। कई महीनों तक लैला जो है मजनू को खाना भिजवाती रहती है। एक दिन लैला उस दरबान से कहती है, सिपाही से कहती है कि आज जब मजनू खाना खा ले पेट भर के, तो मजनू से कहना कि खाना तो तू रोज खा रहा है, मैंने तो अपनी मोहब्बत दिखा दी, आज वक्त है तुझे अपनी मोहब्बत दिखाने का। जब खाना खा ले तो इसी प्याले में, इसी कासे में उससे कह कि अपनी उंगली काट और इसे खून भर के मुझे दे, ताकि मुझे पता चले कि तू भी मुझसे मोहब्बत करता है। मजनू ने खाना खा लिया। जब सिपाही ने कहा तो मजनू ने कहा, जाके लैला से कह दो ये मजनू खाना खाने वाला है, खून देने वाला नहीं है। ये मजनू खाना खाने वाला है, खून देने वाला, मैं हुसैन का कौन सा मजनू हूं? हुसैन की दुआओं से पलने वाला या हुसैन पर अपना खून भी देने वाला? लोगों ने तारीख में वादे किए, लेकिन वादा खिलाफी की, साथ नहीं दिया। आप देखें, मैं आपके सामने कुछ वाकयात आपके सामने पेश करता हूं कि इमाम हुसैन जब मक्का से निकले हैं, तो इमाम हुसैन मक्का से निकल रहे हैं, अलग अलग जगह कहते हैं 14 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोकेशंस पर इमाम हुसैन रुके थे जब मक्का से निकले हैं। अब गौर करें, इमाम हुसैन के साथ जो साथी हैं, ये वो साथी हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इन लोगों ने हज को छोड़ दिया और विलायत के साथ आए। हज को छोड़ दिया था ना, इमाम हुसैन ने कहा हज नहीं चाहिए, तो इन्होंने भी करनी चाहिए। एक पहली जगह जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं, तारीख में उस जगह का नाम लिखा है सफ़ा। वहां पर जब इमाम हुसैन पहुंचते हैं, तो वहां पर इमाम हुसैन को शायर मिलते हैं, फरजदक। फरजदक से इमाम पूछते हैं, बताओ फरजदक, कूफा के हाल क्या हैं? फरजदक कहता है, मौला, कूफा वालों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें आपके साथ नहीं हैं। दिल हुसैन के साथ है, लेकिन तलवार हुसैन के साथ। सवाल, क्या आज मेरा दिल हुसैन के साथ है या मेरी शमशीर भी हुसैन के साथ है? क्योंकि सिर्फ दिल हुसैन के साथ हो, शमशीर हुसैन के साथ ना हो, तो हुसैन शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरजदक को जवाब देते हैं, और जवाब के अंदर मौत के सिलसिले में बताते हैं, मौत की कोई वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ जगहों को उबूर कर रहा हूं, गौर करिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जगह पहुंचते हैं जिस जगह का नाम तारीख ने लिखा है जुबाला। जब इमाम हुसैन वहां पहुंचते हैं, तो इमाम हुसैन को पता चलता है कि मुस्लिम शहीद हो गए। आप सिनेरियो समझें कि इमाम हुसैन काफिला लेके कहां जा रहे हैं? कूफा।

मक्के को हज को तर्क किया है, कूफा के रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में इमाम हुसैन को पता चलता है कि मुस्लिम शहीद हो गए, यानी कूफा का हालात, कूफा के हालात बदल गए। इमाम हुसैन का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? इमाम हुसैन कहते हैं कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए।

कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इमाम हुसैन सबको जमा करते हैं और एक खैमा होता है, उस खैमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात को, उलमा कहते हैं तकरीबन 200 या 250 लोग उसके आसपास इमाम हुसैन के साथ थे। उधर इमाम हुसैन इस खैमे के अंदर सबको बताते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम को शहीद कर दिया गया कूफा में, यानी कूफा अब अमन की जगह नहीं है, तो मेरे साथ इसलिए नहीं चलना कि वहां गुलो गुल और बुलो बुलबुल होंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर इमाम हुसैन कहते हैं फमन अहब मिन कुमुल इंसराफ फल यंसरिफ लैस अलैहि मिन्नत इमामुन। इमाम हुसैन कहते हैं कि जो भी तुम में से मुझे छोड़ के जाना चाहता है छोड़ के चले जाए, मेरी कोई उसके ऊपर जिमाम नहीं है, मैं अपनी बैत उठाता हूं चला जाए। मैं अपने आप से और आप अपने आप से ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये ऐसा इमेजिन करें कि आप उस खेमे में बैठे हैं, हुसैन आपसे बोल रहे हैं, हुसैन बोल रहे हैं कि मैं शहीद होने जा रहा हूं, जिसको जाना है चले जाओ, मैंने अपनी जिमाम को उठा लिया है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते मन का नफीन बादलन मुहजतहु व मुवत्तनन अला लिका इल्ला नफ्सहु फलयरहल माना। इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरे साथ कौन चलेगा, मन का नफीन मेरे साथ कौन चलेगा, बादलन मुहजतहु जो बज़ल करने तैयार है, जो सैक्रिफाइस और कुर्बानी देने तैयार है, किस चीज की, मोहजतहू, क्या मोहजत है मौला, क्या देना है। इमाम कह रहे मेरे साथ वही चल सकता है जो मोहजत की कुर्बानी दे। जानते हैं मोहजत, हम ज़ियारत आशूरा में भी है आखिर में पढ़ते मोहजतहू। गौर करिए कि किसी जानवर को अगर आप जिब करेंगे तो जानवर को जिब करने के बाद अगर उसका जो हार्ट है, दिल है, आप वो दिल को रखें और 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि जानवर जिब होता है तो सारा खून उसका बह जाता है, लेकिन उसके दिल को अगर आप अलग कर लें और वो दिल को 2 या 3 दिन के बाद भी अगर आप काटें तो उसके अंदर कुछ कतरे खून के बाकी रहते हैं, उस कतरे खून को कहते हैं मोहजत। हुसैन कह रहे हैं मेरे साथ वो चलेगा जो अपनी मौत के बाद भी उसके दिल में कतरे खून है वो मुझे देने तैयार होगा। आसान नहीं है करबला। अजीजाने गिरामी, करबला एक नहीं पहुंचा जिसने हुसैन से कहा हो मुझे ये चाहिए, करबला वो पहुंचते हैं जो हुसैन से कहते हैं मौला आपको क्या चाहिए। ताजिरों की करबला और है, आशिकों की करबला और है। अपनी जिगर का खून आखिरी कतरा, कैसे एक बूढ़ा नमाज पढ़ रहा है करबला में, शहीद नमाज पढ़ रहे हैं, जुहैर भी नमाज पढ़ रहे हैं।

बारगाह में सबसे सख्त काम होगा वो मुझे दो। कहा दूसरा मुझे ऐसा काम दो जिसमें मैं लोगों के सामने ना हूं, पीछे रह के काम करूं। इमाम बारगाह में रोज जाते थे, जब भी मजलिस होती थी इमाम बारगाह में 2 घंटा 1 घंटा पहले पहुंचते।

बारगाह को साफ करते थे, वहां का वॉशरूम टॉयलेट खुद अपने हाथों से धोते थे। सब खाना खा लेते थे तो बर्तन धोते थे, फिर जाते थे घर। एक दिन, जवानों सुनो, गौर से सुनो, एक दिन बहुत थक गए थे शहीद हुजे जी और सर को झुकाए ऐसे बैठे थे। जो बानी मजलिस था उसने आके कहा कि हुजे जी आज तुमने हक अदा कर दिया। शहीद हुजे जी कहते हैं क्या कह रहे हो, हुसैन के लिए कह रहे हो? का जिस दिन मैंने अपनी गर्दन हुसैन को दे दी ना उस दिन भी मैं हुसैन का हक अदा नहीं कर सकता। ये है करबला। उनकी बीवी इंटरव्यू देती है, आपने देखा होगा वीडियो, उनकी शहादत का जो वीडियो था जब वो शहीद हो रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। उनकी बीवी इंटरव्यू देते देते रोती है, गिर जाती है, जो एंकर रहती है वो रोते रोते गिर जाती है इंटरव्यू के दौरान। उनकी बीवी कहती है आप जानते हो कि शहीद हुजे जी जो है, जब आपने देखा वीडियो, उनकी बीवी कह रही है कि जब शहीद हुजे जी का वीडियो है शहादत का, उनका सर इस तरीके से पकड़ा है दुश्मन ने तो उनके होठ सूखे हुए थे। क्या जानते हो क्यों सूखे हुए थे? कहते बचपन से शहीद हुजे जी की तमन्ना थी कि मैं हुसैन की तरह भूखा प्यासा शहीद हूं। ऐसी मोहब्बत की हमने कभी हुसैन से? कहती है कि वो जिंदगी पागी मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि उन्होंने जिंदगी पाकीजा गुजारी थी। क्यों गुजारी थी? इसलिए गुजारी थी क्योंकि उनकी एक तमन्ना जिंदगी में थी कि मौत के वक्त मुझे हुसैन की जियारत नसीब हो। कहती है मुझे यकीन है कि जब वो शहीद हो रहे थे गला कट रहा था, मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि हुसैन की जियारत उन्हें नसीब हुई। ये लोग हैं, ये करबला को अलग नजर से देखते हैं। आप सोचें, वो माएं जिनके बच्चे जाते हैं शहीद हो जाते हैं पलट के आते हैं, एक बच्चा शहीद हो गया है, 8 मुहर्रम को खबर मिली कि बच्चा शहीद हुआ है, घर में मातम हो गया, माँ के डांटती है सबको, कहती है शर्म नहीं आती तुम्हें, आज हजरत अब्बास का मातम करेंगे या मेरे बेटे का मातम कर? करबला, हमें इस करबला को जिंदा करना है अपने। करबला करबला करबला करबला करबला करबला लबई कया अब्बास। अजीजाने गिरामी, गौर करिए, एक इंशाल्लाह वो हदीस पे पलट के आऊंगा। एक काफिला आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास मिलने के लिए। आप कभी कभी, अहले बैत की मजलूमियत सिर्फ ये नहीं थी कि अहले बैत पे जुल्म हुआ या उनको शहीद किया गया, एक आलिम की, एक हादी की सबसे बड़ी मजलूमियत ये है कि वो आलिम और हादी मौजूद हो और कोई उससे इल्म ना लेता, कोई उससे पूछता ना हो। मौला अली 25 साल मदीना में थे, लोग पूछते नहीं थे, सवाल करने नहीं आते थे मौला अली से। इमाम हसन की शहादत के बाद 10 साल इमाम हुसैन थे लेकिन लोग आते नहीं थे, पूछते नहीं थे। आप देखें कितनी हदीसें हमारे पास उस जमाने की हैं जिस जमाने में 25 साल मौला अली अलैहि सलाम का जो जाहिरी सुकूत था या 10 साल इमाम हसन अलैहि सलाम के बाद इमाम हुसैन थे, कितनी हदीसें हमारे पास। मजलूमियत अहले बैत समझे इस हदीस के अंदर, गौर करें कि लोग इमाम हुसैन से कैसा रिलेशन रखते थे और इमाम हुसैन कैसा रिलेशन चाहते थे लोगों से। आप देखें हदीस है पालू अब अब्दुल्ला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। या अली, वो गिरोह आता है, वो गिरोह इमाम से कहता है फ़काला इदन
ओजीज़कुम बे अख्त

तरह नहीं, वो आके पहले कहता है कि हम आपके पास आए, एक ग्रुप है, हम आपके पास आए, लेकिन हमारे कुछ दोस्त माविया के पास गए हैं, और जब वो माविया के पास गए तो माविया ने उनको इनाम दिया। इमाम पलट के कहते हैं, परेशान मत हो, जितना माविया ने दिया है उससे ज्यादा मैं दूंगा। गौर करें, ईमान का कम से कम रुतबा इतना होना चाहिए कि इंसान को पता होना चाहिए जितना यजीद दे सकता है उससे ज्यादा हुसैन दे सकते हैं। जिसको ये यकीन होता है वो कभी यजीद के दरबार पे नहीं जाता सलाम करने, चाहे वो उस जमाने का यजीद हो चाहे इस जमाने का यजीद, क्योंकि पता है हुसैन देते हैं। अब गौर करें, लेकिन ये बामारिफत लोग थे। इन लोगों ने जवाब में इमाम से कहा कि फकालु जो इल्ना फिदाका इन्नमा जेना मुर्ता दीन अले दीन का। इमाम को कहा, मौला हम लोग यहां कुछ लेने नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपके दीन से मोहब्बत करते हैं। गौर करिए, इमाम ने क्या किया जानते हैं? इमाम ने दोनों हाथों को ऐसे जमीन में गाड़ दिया, दोनों 10 के 10 उंगलियों को जमीन में गाड़ दिया, सर को अफसोस में झुका लिया। रिवायत है कि इमाम इसी हालत में बहुत देर तक बैठे रहे। सवाल, क्या इस शख्स ने कोई गलत बात बोली, कोई बुरी बात बोली? इसने कहा, मौला मैं आपके दीन के लिए आया हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। लेकिन लोग आते नहीं थे हुसैन के पास ये कहने के लिए कि मौला मैं तेरे दीन के लिए आया हूं। मजलिसों में कितने हैं जो हुसैन को ये कहने आए हैं, मौला मैं तेरे दीन के लिए आया हूं। कितने लोग जन्नत के लिए आए हैं, कितने लोग गुनाहों को बख्शवाने के लिए आए हैं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन हुसैन इन मजलिसों में ढूंढ रहे हैं कौन है जो ये कहने आया है, मौला मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूं, मुझे तू चाहिए। फिर हदीस है, इमाम अलैहिस्सलाम, गौर करिएगा, इमाम अलैहिस्सलाम काला फता रासहू, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सर को बुलंद किया। और आगे जाके हदीस में यह है कि इमाम ने, हदीस में कहते हैं इमाम कि कोई भी अगर हमसे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत में दो चीजें हों, क्या है कि मन अहब्बना लम युहिब्बना ले कराबतिन बैनना व बैनहू, वो हमसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि हमारी और उसकी कोई रिश्तेदारी है, और इसलिए भी हमसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि हम उसे कुछ देंगे, यानी उसकी मोहब्बत में खुलूस है, इन रिटर्न की वजह से मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो मोहब्बत दीन के लिए कर रहा है। फिर इमाम कहते हैं कोई अगर हमसे मोहब्बत करता है लिल्लाह व रसूल, अगर अल्लाह और रसूल की वजह से और दीन की वजह से मोहब्बत करता है, मुखलिस है, इन रिटर्न एटीट्यूड नहीं है। इमाम कहते हैं रोजे कयामत दो उंगलियों को बुलंद करके कहते हैं, रोजे कयामत जैसे ये दो उंगलियां हैं उसी तरीके से मेरे साथ वो कयामत में खड़ा होगा। जो हुसैन से ऐसी मोहब्बत करे कि ना कराबतदारी है ना कुछ रिटर्न में चाहिए, अजीजाने गिरामी हमें नहीं चाहिए, वो तो करीम है, वो अता करते रहेंगे। हम कह रहे मेरे साथ रोजे कयामत में ऐसे खड़े होगा। बस गौर करिए, मेरी हुसैन से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, जहां पर मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये हो कि मैं हुसैन पर कुर्बान हो जाऊं। यह आखिरी मंजिल है जिंदगी की।

कैसे, इन लोग कौन सी वादी में जीते हैं? हमें उस वादी में पहुंचना है जो हुसैन की वादी है, करबला की वादी। ये नजफ में रहते थे, नजफ से करबला पैदल जाते थे, उस जमाने में जब कोई मौकिब नहीं होता था। गर्मी थी, शिद्दत थी, गर्मी की शिद्दत में चलते चलते चलते इनको प्यास लगी। जब इनको प्यास लगी तो इन्होंने सोचा थोड़ा आगे जाके पी लूंगा, कहीं मिल जाएगा पानी। चलते रहे, थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए, प्यास की शिद्दत बढ़ती रही, बदन से पसीना निकलता रहा, प्यास की शिद्दत बढ़ती रही। पैर में ठोकर लगी, खून निकल गया, दर्द बढ़ गया, प्यास भी बढ़ गई। अचानक एक लम्हे के लिए इन्होंने सोचा कि मेरी ये प्यास से हालत है, जबकि मैंने कुछ घंटा प्यासा था, हुसैन इब्ने अली की करबला में प्यास कैसी होगी? सोचते सोचते ये शहूद की मंजिल में चले गए। इन्होंने अपने आप को करबला में देखा और ये देख रहे हैं कि करबला में क्या हो रहा है, हमला हो रहा है हुसैन पे। ये उस हमले को रोकना चाह रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, अपनी आंखों से हुसैन की शहादत देख रहे हैं। चलते चलते करबला पहुंच गए। जब इमाम हुसैन के रोजे में पहुंचे तो इमाम हुसैन के रोजे में पहुंचने के बाद उन्होंने रोजे में जैसे ही जरी को देखा तो जरी में इन्होंने एक आवाज सुनी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरा नासिर हो, यावर हो, मददगार होगा। बाबे अजा, ये मुहर्रम में आपके और मेरे कानों में कभी यह आवाज गूंजी कि हुसैन इन मजलिसों में अपने नासिर हो, यावर हो, मददगार ढूंढ रहे हैं? हल मिन नासिरिन यंसुरना। फिर कहा कि मैं हजरत अब्बास के रोजे में गया तो मुझे अभी भी उनकी जरी से आवाज सुनाई दी, लब्बई कया हुसैन, लब्बई कया हुसैन, लब्बई कया हुसैन। अजीजाने गिराम, आज भी हुसैन की सदा बाकी है, लब्बई कया हुसैन आज भी सदा बाकी है। ये आप जो बैठे हैं सब गुल हैं, फूल हैं, इन फूलों से हुसैन एक गुलदस्ता बनाएंगे। हमें अपने आप को पेश करना है कि हम इस मुहर्रम में वो गुल बन जाएं जो इमाम हुसैन के गुलदस्ते में आ जाएं। अरबाब आजम, शायद हमें लग रहा होगा कि मैं गुनहगार हूँ, मौलाना ये सब क्या बात कर रहे हैं, इसीलिए मौला ने हूर को बुला लिया था ताकि तुम्हें एहसास ना हो कि तुम गुनहगार होने के बाद नहीं आ सकते। अजीजाने गिरामी, बस करबला वो दर है जो खुला हुआ है और उसमें चाहने वालों के लिए रास्ता आज खुला है। मैं मजलिसों में इस एटीट्यूड से ना आऊं कि मुझे सिर्फ जन्नत मिल जाए, सिर्फ गुनाह माफ कर दिए जाए। ये है, ये मिलेगा, मैंने मजलिसों में पढ़ा है, लेकिन इससे हायर गोल है, मुवत्तिनन अला लिकाइल्लाह नफ्सहु, जो अपनी नफ्स को ऐसे तैयार करे कि अल्लाह से लिका के लिए, मुलाकात के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। वत्तिनन अला लिकाइल्लाह नफ्सहु। या अली, अजीजाने गिरामी, लिकाउल्लाह यानी अपने आप को फना कर देना अल्लाह के ऊपर। देखें मौत क्या है, मौला अली नहजुल बलागा में बताते हैं, गौर करिएगा। मौला अली कहते हैं, इंसान जब मर जाता है

फरिश्ते कुछ सवाल करते हैं, लोग कुछ सवाल करते हैं। कहा कि मौत जो है ये दो जुमलों के अंदर, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, या अली। मौला कहते हैं इन्नल मरा इदा हलका कालन नासो मा तरका, जब कोई मर जाता है तो लोग पूछते हैं कि क्या छोड़ के गया है। वकालतिल मलाइका मा कद्दमा, और मलाइका पूछते हैं क्या लेके आया है। ये मौत है, रिश्तेदार पूछेंगे क्या छोड़ के गया है, फरिश्ते पूछेंगे क्या लेके आया है। अजीजाने गिरामी, चार चीजें हुसैन तक पहुंचने के लिए इस हदीस के अंदर हैं। पहला, अपने आप को बज़ल करे, बज़ल यानी अपने आप को वॉलेंटियर बनाए दीन खुदा के लिए। यानी अगर इस जमाने में वक्त के इमाम को कुछ चाहिए तो उनको ये नहीं सोचने की जरूरत होना चाहिए कि दारुस्सलाम में कौन करेगा। आई एम द फर्स्ट दैट इमाम शुड लुक अप टू, दैट इज बज़ल, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ बज़ल मेरे अंदर होना चाहिए। क्या चीज बज़ल करना है? मोहजत, यानी एवरीथिंग दैट यू हैव इज फॉर हुसैन इब्न अली। आप देखें कितना ब्यूटीफुल है करबला। के मैं एक मिसाल दूं, मिसलन मीनाब में एक बम फटा, 168 बच्चियां जो हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं वहां गया था कि वो जो बिल्डिंग की सलिया है वो सलिया तक पिघल गई है। छोटे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा, तसव्वुर करें। अब तसव्वुर यह करें कि उसके मां बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। अब करबला है, करबला में ज़ैनब कुबरा ने यह सब देखा, ने भाई के लाशें देखे, टुकड़े देखे, सब देखा, अली असगर की शहादत देखी। लेकिन जब दुश्मन ने पूछा बताओ करबला कैसा था, तो कहा मा राईतो इल्ला जमीला, कि करबला में खुदा के हुस्न व जमाल के सिवा कुछ नहीं देखा। यानी क्या मंजिल पे है ज़ैनब कुबरा। लबई किया ज़ैनब अजीजन, लबई किया ज़ैनब अजीजाने गिरामी। करबला वो आपको और मेरे को पैरामीटर दे देता है कि जब मौत की बात हो तो हर चीज कुर्बान होने के बाद भी कहना है मराई तो इल्ला जमीला, मेरा था ही क्या। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी का सब था, उसी ने सब ले लिया। करबला ये है, ये पहली चीज, बज़ल करने की ख्वाहिश, वॉलेंटियर बनने की ख्वाहिश, हुसैन का गुलाम बनने की ख्वाहिश, खुद्दाम बनने की ख्वाहिश, ये पहली चीज है। दूसरा, किस चीज में मौ अपने अपने पास जो कुछ हो उसके पीक तक पहुंचाने के लिए। तीसरा ये है कि हम ये माने कि ये दुनिया टेम्पररी दुनिया है, ये हमारा वतन नहीं है, वतन हकीकी वहां है जहां हमें हमेशा रहना है, और काश वहां रहें जहां हुसैन हो। अज़ानी ग्रामी, एक रिवायत है मेरे जहन में इस वक्त आई है, गौर करिए, इंशाअल्लाह खुदा करे कि हम वहां मौजूद हों। रिवायत है कि कयामत का मंजर है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहां पर कुछ बात कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, मजलिस पढ़ रहे हैं, और उनके चाहने वाले

उनकी बात में इतने मगन हैं कि सब के सब ने सर झुका के रखा है, किसी ने सर उठाया नहीं। ऐलान होता है कि बहिष्ट में दाखिल हो जाओ, और रिवायत है कि किसी हुसैन के चाहने वाले ने सर नहीं उठाया, इतना हुसैन की बात में मदहोश थे। काश हम उस महफिल में हों जहां हुसैन साथ हो। बाबे अज़ा, बस ये मेरे अंदर वो क्वालिटी कि मैं अपना खून दे सकता हूं हुसैन इब्ने अली के लिए, ये करबला है। हुसैन ने इसलिए बुलाया है, ज़ैनब ने इसलिए बुलाया है, हाईएस्ट गोल हाईएस्ट लेवल अता करने के लिए बुलाया है। अजीजाने गिरामी, करबला में एक शख्स था जो इसी मकाम तक पहुंचना चाहता था, जिसका नाम हुर था। जवानों जो बैठे हैं, अगर कोई सोच रहा होगा मौलाना मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मौलाना मैंने तो ये गुनाह किया है, मैं तो वो गुनाह किया है, मैंने वो गुनाह किया है, हुसैन हुर को माफ़ कर सकते हैं तो तुम्हें भी माफ़ कर सकते हैं। आप यहाँ आए हो क्योंकि हुसैन ने आपको बुलाया है। हुसैन आज की रात आपको अता करना चाहते हैं, आपको हुर बनाना चाहते हैं। आज रो रो के हुसैन से बात करनी है, हुसैन से माफी तलब करनी है। अरबाब अज़ा हुसैन इब्न अली का काफिला एक जगह पहुंचता है, जहां पहुंचता है हुसैन का काफिला, पानी हुसैन के पास होता है, हुर आता है अपने लश्कर के साथ प्यासा, हुसैन पानी पिलाते हैं, हत्ता घोड़े को पानी पिलाते हैं, हर शख्स को पानी पिलाते हैं। जब सब सैराब हो जाते हैं, हुसैन जाना चाहते, हुर कहता है जाने नहीं दूंगा, फरस में हाथ डाल देता है। हुसैन पलट के कहते हैं तेरी मां तुझ पे रोए और हुसैन हिदायत के लिए याद दिलाना चाहते थे। हुर पलट के कहता है कि अरब दुनिया में किसी ने कहा होता तो मैं उसकी मां का नाम जरूर लेता, लेकिन मैं कैसे आपकी मां का नाम लूं, आपकी मां फातिमतुज़्ज़हरा है, मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा हुर तू फातिमा का इतना ख्याल रखता है, तू फातिमा से इतनी अजमत का कायल है, यही फातिमा तेरी हिदायत का सबब बनेगी गौर, लेकिन एक बात सुन ले कि यही फातिमा जिससे इतनी अजमत का अकीदा अकीदत पेश कर रहे हो हुर, मदीना में यही फातिमा है और इसी फातिमा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। अरबाब एक लम्हे के लिए देखे मुझे कि जब फातिमा जहरा जवानी के आलम में 19 साल के आलम में फातिमा जहरा की यह हालत थी कि उलमा कहते हैं कि जब फातिमा चलना चाहती थी तो इस तरीके से कमर पकड़ पकड़ के दीवारों का सहारा ले लेके चला करती थी। ये जवानी में ज़ईफ़ा है फातिमा। खार बाबे अज़ा, हुर ने नाम नहीं लिया, लेकिन वो मंजिल आई कि शबे आशूर आया। जब शबे आशूर आया हुर परेशान था, हुर के बेटे ने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ सबसे बहादुर कौन है तो मैं आपका नाम लूंगा, क्यों इतना बेचैन हो? तो हुर कह रहा है मैं आज खुद को जन्नत और जहन्नम के बीच में देख रहा हूँ। जवानों जो अपने आप को आज की रात जन्नत और जहन्नम के बीच में देख रहा हो, आज हुर बने फैसला करे हुसैन की तरफ आने का। हुर आते हैं हुसैन की तरफ, इस हालत में आते हैं कि जूते को अपने गर्दन से बांधते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं जलील और खार हूं। अरे हुर अपने आप को जलील बता रहा है, हुसैन